क्या बात है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। खूबसूरत मौसम दे विच खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां ते मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधू।

क्या बात है सरदूल साहब दिया, क्या रीसा यार, क्या खूबसूरत आवाज़, और ऐसी आवाज़ जी साढ़े तो जुदा हो गई है, तो ऐसिया आवाज़ा ने वार वार मुड़ के नहीं आना। सो 905-673-3337 डुबे नू तिनका, डुबदे नू तिनका रब लगता, डुबदे नू तिनका रब लगता, तो भुखे नू किनका भी रब लगता, भरदे नू तिनका नहीं दींदा, जिहड़ा भरदा हुंदा ना रज्जिया हुंदा उहनू तिनका नहीं दींदा, ते रजे नू भी, रजे नू रब भी जब लगता, रजे बंदे नू रब नहीं चेते आउंदा, इह तां भुखे ते जिन्हों तकलीफा दुखा दे विच फिर उदों ही रब नू कहिंदा कि भाई हे रब्बा बस एक बारी कढ़ ला, ते फिर जदों रब कढ़ लैंदा फिर कहिंदे भाई तूं कौण ते मैं कौण। 905-673

वीडियो ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कम्युनिटी दे विच हाजर है गोर रोड एंड एबनीजर ते लोकेटेड ने IPTV अते गुरबानी रेडियो दिया सर्विसेज दे लई भावे तुसी 4K IPTV सुपर फास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बॉक्स लेना या थोड़े कोल बॉक्स हैगा पर तुसी ढिलों वीडियो दे कस्टमर बनना चाहुंदे हो नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ तुसी ढिलों वीडियो नु कॉल करो मेन प्रोडक्ट ढिलों वीडियो दा गुरबानी रेडियो इंडिया लेके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा नितनेम दिया सारिया बाणिया ने ढाडी वारा ने 300 शब्द ने 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी टोरंटो एयरपोर्ट तो लेके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलों वीडियो दा गुरबानी रेडियो IPTV दी स्टॉप दी सर्विस या ढिलों वीडियो गुरबानी रेडियो गो रोड एबनीजर 7 दिन खुले ने 11 to 8 905-204-1313 905-204-1313 Tech Spirit हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475051557 6475051557 ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 416-477-2040 416-477-2040 4704-477-2040

0: कैसे चेक करवाएंगे, है आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सनग्लासेस, आपको अपने आके चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए में चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-9080 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: हर हर रामियों का दिन सगला को विदा, अपनी कृपा धारी

असली ठान ही रव्या आज जुगा जाता मत पता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाए मुठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पाठ

संतन बस भोग रहा सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन मदन आरोग गुनगा भगत राम के ते अमृत जोग आए बसों का तेज महिमा

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम अब बेहतर ही हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई ग्रेजुएशन की। और अभी बच्चों के स्कूल बंद हो जाने हैं, जून के एंड तक फिर छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चों को भी गर्मी होती है। तो आप सभी का स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपके लिए बढ़िया सा प्रोग्राम पेश करते हैं। पहले तो आपको बता दें, आपने फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया लेके देना है, या फिर आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू लेके देना है आउटडोर पार्टी करने के लिए। वो तो आप फादर्स डे के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल सेल्स का फायदा उठाइए, topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल लैंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी वर्क में है। तो और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने कहीं पे भी आपको बढ़िया सा आपको सोने के गहने लेने हैं, सोने के बार्स लेनी है, बढ़िया से आपको फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, ब्रेसलेट्स, गोल्ड की चेन चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी स्पेशल्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया उनकी स्पेशल सेल फादर्स डे की। किसी तरह का वो ऑर्डर करना है तो आप 905-673-0100 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी फादर्स डे स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। आप सभी को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो अब आपके लिए ये बहुत ही एक प्यारा सा गीत हम सुनाते हैं। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो आप कोलिजन का काम करवाने के लिए आप जाइएगा मास्टर कोलिजन डिपो, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं। तो आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है masterkollisiondepot.com पर जाकर आप जान सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिएगा, masterkollisiondepot.com पे जाके उनकी सारी जानकारी ले सकते हो। और गोर रोड पे लंदन में उनका गैराज है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, लेट्स गो टू द बढ़िया सा प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। तो गाना भी बहुत बढ़िया सा है, तो लेट्स गो।
1: चमन के फूल भी तुझे को गुलाब,
0: लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आए।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका संसार में क्या है कि जिंदगी में आपको अपने आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में देखना जानना बहुत जरूरी है, उसके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो धोखा करने वाले लोग हैं, हेरा फेरा करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग शक्लों में अलग अलग भेसों में आपके आसपास मंडरा रहे होते हैं और आपके ऊपर हावी होने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी के खुद मजदार हैं, आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने आप को खुद ही बचाना चाहिए, बजाय कि बाद में पुलिस के चक्कर पड़े और फिर और अदालतों के चक्कर पड़े। तो अदालतों के चक्कर में तो कोई आपके पैसे ही लगेंगे। अब इस हफ्ते देखो, एक हफ्ते में 2 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई अपने इन लाइन ऑफ देयर ड्यूटी। हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है और साथ साथ उनकी जो समाज में उन्होंने इतनी सेवा की, और हम सभी को दुख है, ये जो दुख है हम उनके परिवार के साथ मिलकर उनको शेयर करते हैं उनका ये दुख, क्योंकि वो कितने समाज के लोगों की जाने बचा रहे थे, सेवाएं कर रहे थे और उसी लाइन ऑफ ड्यूटी में उन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानी कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इसलिए हम उनका वो जितनी देर तक ये धरती है लोग उनको याद करते रहेंगे और उनकी कुर्बानियों को धन्यवाद करते रहेंगे।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਐਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਨ ਕ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1162-1316-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गर्दसार में। तो मैं बात कर रही थी कि आपको अपना अपने आप से अपना ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन जो होती है, कुछ भी सीखना है आपको तो एजुकेशन इज एजलेस, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप जरूर सीख सकते हो। जैसे AI है, अभी अगर आप घर पे बैठे ही अपने लिए कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो आपके लिए कितनी बड़ी नॉलेज की बात हो जाएगी।
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिडोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 and 10 ब्रांटन, टेलीफोन 905-799-9400।
1: तो अब अगर आप किचनर वाटर गोल्फ में घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप निशीव खंड को कॉल कीजिए 519-542-1260 519-546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब आपके लिए आप एक और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गीत है, देवानंद के ऊपर फिल्माया गया था और तेरे घर के सामने फिल्म का। Let's go to, अगर आप मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए HK Movers कनाडा भर में मूव होने के लिए आपकी मदद करते हैं। तो अभी अपना ट्रक बुक करने के लिए आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं 416-524-4416-524-6704 HK Movers।
3: ये बता
1: जी हाँ, तो आप प्रोग्राम, अगर आपको किसी तरह की भी आपने कोलिजन का करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है गोल रोड पे। तो आप और जानकारी उनके बारे में फिर आप अगर कोई भी किसी तरह की भी सेवाएं लेना चाहते हो तो आपके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया सेवाएं मिलेंगी। तो HK Movers।

आपका स्वागत है घर संसार में। आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा गीत मैंने चुना है, तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर आरिया लाना चाहते और फादर्स डे के लिए गिफ्ट आपको खरीदनी है, बढ़िया सा टीवी आपको चाहिए, जहाँ फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं फादर्स डे के लिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की फादर्स डे सेल का फायदा उठाइएगा। उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045 पे आप टॉप टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग, तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, आपके सामान को पार्सल से पहुंचाते हैं, तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए। तो 416-524-6524-6504-6704 आपके सामान को हफाजत से पहुंचाते हैं एच के मूवर मूविंग के लिए। आज ही कॉल कीजिए 416-524-6704।

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर को कॉल कीजिए 905-625-0055। आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, न्यू इंडिया स्वीट्स का रेस्टोरेंट को कॉल कीजिए 905-814-1730-814-1730। नानक राम चढ़दी कला तेरे पाने सुला है वंडरफुल डे। रात को आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए नानक राम चढ़दी कला तेरे पाने सुला। तो अब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और आपकी होस्ट मीरा। तो आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो, और मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और सराहते हैं।

0: company architect करवाने हैं, eye exam, eyeglasses, contact lenses, sunglasses. आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सिल्की ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में. अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज. जी हाँ, आपकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए. आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-9335 पर कॉल कीजिए. 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल. योर विजन इज योर बिजनेस.
1: हर हर राम पियो का दिन सगला.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

रहमत तेरी, नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तू ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हाँ अपने शो रेडियो आवाज़ 'च, ते तुसी सारे साडे नाल इंज जुड़े रहोगे सवेरे 10 तो लैके 1 बजे तक। ते अज दा बहुत प्यारा प्यारा दिन है, ते बहुत प्यारे प्यारे सारे साडे लिसनर सानू सुन रहे हैं, और साडे स्टूडियो दा नंबर हैगा 905-673

अज दे दिन दी शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही प्यारा वेदर है और उम्मीद कर दिया कि तुसी सारे तंदुरुस्त होगे और अपने फैमिली दे नाल, अपने फ्रेंड्स दे नाल इंजॉय कर रहे होगे। अज हैगा साडा रेडियो दा प्रोग्राम 1 बजे तक और असी तुहाडे लागे इन्नियां सोहणियां सोहणियां तुहानूं डील्स देवांगे और बहुत ही खाण पीण दे मामले च वी अज इन्नियां सोहणियां डील्स है। देखो जी, फादर्स डे आ गया है और फादर्स डे ते असी अपने फादर्स नूं, अपने हसबेंड्स नूं, जो भी मेल परसनैलिटी साडी लाइफ च हैगी है, सारयां नूं खुश करना है क्योंकि सारा टाइम ये साडे लई साडा बैकअप, साडा सपोर्ट सिस्टम है और साडे सारयां दा इन्ना ध्यान रखदे हो। सो अज दा दिन की हर ही दिन साडे मां बाप दा हुंदा है, लेकिन चलो जी अज दा दिन असी शुरुआत करदे हां। सारे अपने फादर्स लई कुछ ना कुछ स्पैशल जरूर करियो, कल दा दिन उन्हां लई भी कुछ स्पैशल आ, जरूरी नहीं है कि गिफ्ट ही देने हैं। तुसी उन्हां नूं स्पैशल फील कराउण वास्ते तुहाडे कोल बहुत वधिया वधिया मौके हैगे आ, जिवें तुसी नज़ारा रेस्टोरेंट ते जा सकदे हो, बहुत वधिया उन्हां ने अरेंजमेंट्स कीते होए आ, असी भी सारी टीम दे नाल नज़ारा ते पहुंच रहे हां और इन्ना वधिया खुश कर देंगे तुहाडे पेरेंट्स नूं। सारी फैमिली दे नाल पहुंचो, उन्हां कोल बहुत वधिया सिस्टम हैगा नज़ारा दी टीम कोल। सो तुसी नज़ारा ते पहुंचना आ और सारे ने अपनी फैमिली दे नाल उत्थे इंजॉय करना आ। सो नाल दे नाल असीं तुहानूं उन्हां दा नंबर भी दे रहे हां। सो नज़ारा दी टीम दा नंबर हैगा 9054512600, 9054512600। ते तुसी सारे ने सानू कॉल करके दसना है कि अजे तक साडे जेडे मेन होस्ट है अमन जी सानू ज्वाइन करन लगे आ, लेकिन उस तो पहला मैनू दसो तुहानू सारे नू मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अज पायलट दी सीट ते मैं बैठी हाँ और मैं जानना चाहवांगी तुहाडे सारे दे फीडबैक्स। सो तुसी सारे ने मैनू कॉल करनी है साडे स्टूडियो दे नंबर ते 9056733337 9056733337, ते सारे कॉल करके एक बार दसो कित्थों कित्थों तुसी सारे सानू सुन रहे हो ते अज दा दिन तुसी किवें स्पेशल प्लान कर रहे हो, सारे कॉल करके दसना है। ते बहुत ही वधिया दिन हैगा आ, सो अज स्पेशल प्लान सारयां दे होणगे ही होणगे। सो कित्थों कित्थों कॉल कर रहे हो 9056733337 ते तुसी कॉल करनी है एंड तुसी सुन रहे हो साडा शो रेडियो आवाज।

0: 515-8000 टोरंटो पेस्टरेस्ट सिक्के बंद काम दी गारंटी 647-515-8000
1: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो
3: 456-6161 पहला सुनते मंडी टू फ्राइडे 4-6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3-6 शामी जाने के देश परदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 तों लैके शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पौंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करने होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्ष

करण लाई देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार दी शाम दी महफिल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी एंड खुशामदीद एंड स्वागतम

समीन चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उम्दा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उम्दा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।